ऐसा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदार्यो। ये कथन तनासरी राग विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी वालों उचारित है, जिस तों भाव है कि चौवां दिशावां दे विच उस अकाल पुरख दा बल आयद है, ते सारी सृष्टि दे जीवां उपर उसदा कर भाव हथ भाव उसकी मेहर है। अपनी किरपा दे चक्षु खोल के उस सारी सृष्टि नू वाच रहा है, देख रहा है, ते अपने प्यारियां दे दुखां नू हरदा है। अर्थात करता परता ते हरता खुद अकाल पुरख है। वो अपने प्यारियां दी रख्या करदा है, अपने प्यारियां नू कंठ नाल ला के उना दे औगण नहीं चितारदा। हर जन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद। सरवण करदे आ भाई बलविंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। हर

हरजन राखे गुर गोविंद, कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बलविंदर सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे वालों गाया होया ये शब्द। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1101 ते सुभाए मान मारू महला पंजवां सिरलेख अधीन उचारी गई बाणी दी एक पौड़ी विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने कि ओ अकाल पुरख परमेश्वर इच्छा पूरक है, उस पासों जो भी मैं मंगदा हाँ उही कुछ मैनू मिल जांदा है। मेरे सुखां दा दाता ओ दातार प्रभु ही है, उही मेरा पिता है, उही सबना नू दाता प्रदान करदा है। उस प्रभु ने ही मैनू रास भाव पूंजी अपना नाम तन सौंप दिता है ते मैनू इस सौदे दा वणज करन दे लायक, इसनू विराजन दे लायक बना दिता है। मोह मंगा सोई देव।

विपदा हर पिता सुखदायक, ज्ञान रास नाम तन सौप्योन इस सौदे लायक। सरवण करदे हां भाई गुरमीत सिंह शांत अते उन्हां दे रागी जत्थे द्वारा गायन कीता होया ये शब्द।

0: सोई देवदा हर पिता सुखदायक। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस पौड़ी की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलविंदर सिंह।
1: पौड़ी हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक औगन को ना चितारदा गल सेती लायक मुँह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंप्यौन इस सौदे लायक सांझी गुरनाल बहालिया सर्ब सुख पायक मैं नालों कदे ना विछड़ै हर पिता सबना गल्लां लायक। विचाराधीन ए पावन पवित्र अमृत बचन शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित पंचम गुरदेव साहिब गुरु अर्जन देव जी दे मुखारबिन तों राग मारू की वार अंदर पौड़ी दे रूप विच उचारण कीते हुए हन। सतगुरु जी इन्हां पावन बचना अंदर फरमाउंदे हन हे अकाल पुरख तू सारे जीवां दा पालनहार है तू मेरी माँ भी है पिता भी है मैं एक बालक वांगू सारियां लोड़ां तैथों मंग के पूरियां करदा हाँ तू मेरा कोई औगुण चितारदा नहीं तू मैनू उच्ची आत्मक अवस्था बख्शन वाला है मैं जो जो मूँह तो मंगदा हाँ तू पिता वांगू वो बख्शदा है ज्ञान दी दात नाम दी दात रूप सौदा तू मैनू लायक जान के बख्शिया है तुसी मेरी गुरु नाल सांझ कैम कर दित्ती है हे अकाल पुरख पिता तू सर्ब कला समर्थ है। विचार अधीन पौड़ी दे आरंभ विच सतगुरु जी बख्शिश करदे ते फरमाउंदे हन हर जी माता हर जी पिता हर जियो प्रतपालक हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक भाव परमात्मा मेरी माँ है परमात्मा मेरा पिता है मापिया वांगू मैनू पालन वाला है प्रभु मेरी संभाल करदा है असी सारे प्रभु दे बच्चे हाँ। इस भाव नू सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने राग माज अंदर इस प्रकार उचारण कीता है तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता भौ के आ काढ़ा जियो। सतगुरु जी राग भैरों अंदर भी बख्शिश करते हैं तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जी प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हौं दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। विचार अधीन शब्द दियां अगलियां पावन पंक्तियां हन सहजे सहज खिलाएंदा नहीं करदा आलक औगुण को ना चितारदा गल सेती लायक भाव मैनू मेरा हरी परमात्मा अडोल अवस्था विच टिका के जीवन खेड़ खिड़ा रहा है इस गल्लों रता भी आलस नहीं करदा मेरे किसे औगुण नू चेते नहीं रखदा मेरा दाता सदा मैनू अपने गल नाल लाई रखदा है। इस भाव दे पावन बचन सतगुरु जी तलंग राग अंदर भी बख्शदे हन मेहरवान साहिब मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान जी सगल को दे दान तू काहे डोलै प्राणियां तू दराखैगा सृजनहार जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार काट काट मालक दिलां का सच्चा परवरदगार। विचार अधीन पौड़ी दे अगले पावन बचन हन मुँह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक ज्ञान रास नाम तन सौंप्यौन

ऐसी प्रीत करो मन मेरे, आठ पहर प्रभ जानो नेरे। आप जी सरवण कर रहे सो भाई वरिंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

अवलोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिव्य दृष्ट कारण करण सत गुर गुर सेव अलख

0: पारस को ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रेह पूर्वो विद वर्णन सतगुर गुर से अलख गत जांकी श्री रामदास तारन तरन सतगुर नानक भगत करी एक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरे अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुर रामदास जय ओ जय जग में ते हर परम पद पायो।
1: पीत बसान कुंद दसान प्रयास सहित कंठमाल मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अलख गम खेल किया अपने उचाहे जियो अकथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहा समाए सुत है सिद्ध रूप धरियो साहन कैसा हाजियो सत सच श्रीनिवास आदि।

0: वाह वाह का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चांद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया घट घट पासा, आपे नर आपे फुन्नारी, आपे सार आप ही पासा, गोरमुख संगत सब विचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा।
1: अगम अनंत अनाद आद जैसे कोई न जाने है, शिव बिरंच धर ध्यान नित है जस वेद बखाने, निरंकार निरवैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गन समथ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जन जग कियो जन मथुरा रस नारस, श्री सत नाम करता पुरख गुर रामदास चित है बस, गुरु समरथ गह करिया त्रोबुद्ध समत समारन को, पुन त्रम तुझा फेरंत सदा अग पुंजत रंग निवारन को, मथुरा जन जान कही जी साच सोर कसु न बिचारन को, हर नाम बोहेथ बडो कल में पव सागर पार उतारन को,
2: जेह सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिने, जेह सतगुर सिमरंत जिदे हर नाम दिनो दिन, जेह सतगुर सिमरंत जिया की तपट मिटावै, जेह सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै, सोई रामदास गुरु बलपन मिद संगत तन तन करो, जे सतगुर रग प्रभ पाईऐ सो सतगुर सिमरो नरो, जिन शब्द कमाए परम पद पायो, सेवा करत ना छोड़।

अहम स सहज सुभाई, दर्शन परसे गुरु जन्म मरण दुख जाई, हो वै सिफत खसम दी नूर अर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पाते साह, माल जनम जनम दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु, जिस पास बैठे आसूहिया सब नादा वेसाहु, सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु, जिस पास

ताकि सरनी पाईए दर्शन भेटत होत आनंदा दुख गया हर गाइए सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकि सरनी पाईए दर्शन भेटत होत आनंदा

शाम कहे स्तंभर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको सच समावे रे कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाए ले प्राचित जाहे नानक तो मखन त्रपाहे जुज मह जोर छदी चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जाद गोपी ले आया बिंद्रावन मह रंग किया कल मह बेत अथर बन हुआ नाव कदाई अलहो भया नील बस्तले कपड़े पहरे

देशाह दान पुरुषा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहेब जी दे दर्शन इशनान।